0: बार नहीं आया था ना, उस दिन मेरे घर में मेरा बच्चा पैदा हुआ था और आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, तो मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मेरे बच्चे का हिस्सा मुझे दिया है, तो मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। दूसरी बार जब नहीं आया था तब मेरी मां का देहांत हो गया था और तब मुझे लगा कि आपने जो तनख्वाह घटा दी है, तो मुझे लगा कि मेरी मां अपने हिस्से का अपने साथ ले गई है, तो मैं उस घटे हुए पैसे के लिए परेशान क्यों हूं। यह बात सुनने के बाद सेठ जी ने उस आदमी को गले लगा लिया। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार बहुत अच्छा वक्त आता है, कई बार बहुत बुरा वक्त आता है। उस आदमी को देखिए, वो जब पैसा बढ़ा तो उछला नहीं, ना ज्यादा खुश हुआ, जब बुरा वक्त भी आया तो ज्यादा दुखी नहीं हुआ। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, सिकंदर वही होता है जो हर वक्त को पार करके आगे बढ़ जाए। इसीलिए आरजे कार्तिक आपसे कहता है, जिंदगी के दबाव में आना बंद कीजिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
1: उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है भाई। तो चलिए बात करते हैं के की आगे। के की इलनेस और डेथ कैसे हुई। के 31 मई 2022 को परफॉर्म कर रहे थे कॉन्सर्ट पे, वो एक कॉलेज फेस्टिवल था जिसका नाम था नजरुल मंचा इन साउथ कोलकाता। और कॉन्सर्ट के बाद जब वो अपने होटल में गए एस्प्लेनाड में, वहाँ पे उन्होंने ठीक महसूस नहीं किया और वहाँ पे होटल में ही उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। वो ज़मीन पे गिर गए और उनको रिवाइव करने की बहुत कोशिश की गई। होटल से उनको हॉस्पिटल में लेके जाया गया जहाँ पे उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। तो वो सिर्फ 53 ईयर ओल्ड के थे, तो बहुत ही यंग एज में हमने एक अपना बहुत बढ़िया कलाकार खो दिया। तो चलिए आगे उनका संगीत एक आखिरी सुनते हैं और करते हैं अलविदा। और अगली बार मिलेंगे आप सभी को, फिर से एक बार एक शो लेके आएंगे आपके लिए और उम्मीद करेंगे आपको वो हमेशा की तरह बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त मैक्स चोपड़ा और आप एंजॉय कीजिए ये आखिरी संगीत आज का।

0: सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस शो परिचय में आना चाहते हैं तो मुझे 021-626-542 पर पहुंच सकते हैं। आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। आप परिचय को हर थर्सडे 5:30 PM से सुन सकते हैं और इस पॉडकास्ट को दोबारा सुनने के लिए NPR के वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो है www.npr.nz/show/परिचय।
1: The latest NPR episodes are available when you want to listen to them at NPR.